काल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मन जन गाव है अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सु

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो। गुण गावहि नवनाथ।

गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास गुर

पुन दुख नास सुखदायक सूरौ जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरौ पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अगजाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ फुन ध्रम तुजा फहरंत सदा अघ पुंज त्रंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु।

के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी

काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो तेह जान जा चहो जगत्र पा।

जंगम सर्प है जग के रिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

हरका नाव अतबड ऊंचा ऊंची हूँ ऊंचा होई अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई मुख संजम हच्छा ना हो वई कर

फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं वितर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा, विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरप तवले आकाश, सुनिए दीप लोक पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विलास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए अथट का स्नान, सुनिए पड़ पड़ पावे मान, सुनिए लागे सहित्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के गाहा, सुनिए सेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्तियों पर गट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार, मन्ने तरे तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवे न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालकान कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अप

आखन जोर च पैन है जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण है जोर, जोर ना राज माल मनसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जा कह जाए, तर्म खंड का एहो तर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते

नानक कथना करड़ा सार, जत पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत सित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिन रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर, तर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदर राग आ

सारे गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ रतनाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पासा उसा पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले नाही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मैला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवड़े आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जती पति नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको ना ही विसरिया, आशा महला पंजवा, ऐ प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमने।

तित कर गावो सोहेला सिवरिहो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहेला, हौ वारी जित सोहेले सदा सुखोए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुर मिल काश सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पाव

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दो गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे सालवाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुखसुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कच नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान। फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए। तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए। श्री राग महला पहला अमल गलोला।

मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सत जान जित सेवे सुख पाईए तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

ता अगर वास तन पास अफसर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणतास।

त्रिसाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाम गुर सर सागर बोहे तो गुर कीरत दरियाओ जे किस पाव।

वस्तु विसाही है सच वखर सच रास जिन्नी सच बनंजिया गुरपूरे साबास नानक वस्तु पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले पुन तात कहो सिस्ती सुप्त समाए लाल गुलाल जहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोषिया हर जप एक है।

विचार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, तिद दिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कहाओ। आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर। जे तन कंतना भावई ता सब अडम्बर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक

निरोध कर्म मिले सच पाय है गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेवी।

तीसरे रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाई है जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सा

Sou para você de patar. चारे अग्न निवार मर गुरुमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुरु मीत कर सच पावे दरगे जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाई है रिद मानक मोल।

गुरुमुख पूर्ण न पावई, सच रत्ते सच भाए, साकत सच न भावई, कूड़े कूड़ी पाए, सच रत्ते गुर मेले है, सच्चे सच समाए, मन में मानक लाल नाम, रतन पदार्थ हीर, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाई है, दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला, परमे पाए ना विजवे, जे पावे दिशंतर देश,

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए, जिना सतगुरु

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अजैसा सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

ऐब तन चुकड़ो ए मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बानी ए मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखें

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया

नाल पलक सौके सदा बयाल कूड़ सुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुकम सोई पर।

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ पियाए।

आए, जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवि न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष 84 परम दे प्रम प्रम होए खुआर।

आए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें मत तू करें पुकार लख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार निरपौ सदा दयाल है सबना करदा सार नानक।

अंगिन पवित्री रतिया मन तन निर्मल होए, कूड़ा रंग कसुंब का बिरस जाए दुख रोए, जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा थिर होए। ए जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न चेते लिवलाए, पग छुए रहना नहीं आगे ठौर न पाए, ओ वेला हथ न आवई अंत दया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे हर से लिवलाए, देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए, हर गुण गावे हर

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, इनके मुख सद उजले इस सच्चे दरबार। ओ अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार, पाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मलहू में कदे तोय राव। मन मुख नाम न जाननी जिन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता, से विस्ता माहि समाए। इनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम के आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरुमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार। पाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर पगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार, पाखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर। सो जन रलाया न रले जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है।

आए, अंदिन नाम तियाये, सहजे नाम समाये, अंदर गच्चे हर सच सियो, रसना हर गुण गाए, पाई रे जग दुखिया दूजे भाए, गुर शरणाई सुख लहे, अंदिन नाम तियाये रहाओ, साचे मेल ना ला गई, मन निर्मल हर तियाये, गुरमुख शब्द पछानिए, हर अमृत नाम समाये, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए, मन मुख मैले मल परे, हों मैं तृष्णा विकार, बिन शब्दे मैल ना उतरे, मर जम्मे हुए खुआर, तातुर बाजी पलच रहे, ना उर्वार न पार, गुरमुख जप तप संजमे, हर के नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याये, एक नाम करता

पुर प्रसादी मन वसै हो मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसै महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए, सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की शरणागति हौं तिन कै बल जा।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए।

जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई, हर जियो साचा साची बाणी।

मेरे मन गुरमुख त्याय हर सोए, गुर का शब्द मन वसे, मन तन निर्मल होए रहाओ, कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए, गुर शब्दी सालाही है, रंगे सह सुवाए, सच्चे सच समाया, मिल रहे न विछड़ जाए, जो किछ करना सो कर रहा, अवर न करना जाए, चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम।

समाए। शब्द मने गुर पाईए विच्चों आप गवाए, अम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सवारनहार। मन मेरे सदा

दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो, शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समाल तू गुर कहे तेरा पार। श्री राग महला तीजा, किस हो सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामै ही ते सुख पाइए।

ना त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा

विनकर्मा पाया न जाए, पूरे पाग सत्संगत लहे, सतगुर पेटे जिस आए, अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए। श्री राग महला तीजा। अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार, सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे ले मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए, परम पुलाना

सच्ची बाणी हर पाये हर स्यों रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना कछू न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई है।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख ले महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पा

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवर पाया आपना हौ मैं दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिरावे आपना हौ कै

अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे जा।

धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास मन जपे एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे मन चूके मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये मन मुख फिरे दीवान शब्द नाची ने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा जग हो मैं मैल दुख पाया मल लागी दूजे भाए मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव दे दूनी मल लागी आए पढ़े मैल ना उतरे पूछो ज्ञानिया जाए। मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

कोई हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ। सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुरु जेवड अवरना कोए हों गुरु शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुर सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मेरे सज्जन।

त्रिपत मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ। गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास। अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए। सतगुर के पाणे जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवाह ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग ही नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस पोगे खुशिया करें माने रंग अपार बोस करें फुरमायसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोए नानक रत्ता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बिलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहिया विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थां सनंतरा तेते पव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नामे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से

सोया, तीजे चाक चखाया, चौथे पोर पया, तद ही चितना आयो, जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया, जियो किया कुर्बान, जिससे सोजी मन पई, मिलिया पुरख सुजान, नानक डिठा सदा नाल, हर अंतर जामी जान, श्री राग महला पंजवा, सबे गल्ला विसरन, इको विसरना जाओ, तंदा सब जलाए कै

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार, बाँह पकड़ गुर काढ़े।

अपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साप संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडिआइयां।

लाग उपाव स्यानप सगल छड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक को गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसर।

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रया।

सो होए। जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासी।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतरजामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख ऊज

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए।

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर।

राख ले हो प्रभ करणहार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोय न रखनहार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया। श्री राग महला पंजवा। मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश, हर नाम हृदय न वसई कारज कितै न लेख। मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी, गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आइए मस्तक हो वै पाग, कारज सब सवारियें।

असर तीरथ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया, दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जीवालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा, सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुर्बान, मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार, पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मंतन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आरा

संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड अवर ना कोए दूजा छाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए नानक नाम समा

जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात। जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेयरण सौ सेव तू सौरण सुख वस, गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार, नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारण है जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, से वडपागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर पर।

गुरु जेवड अवरण कोय, गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरण हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावने साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा। संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए, गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाव, आगे दरगह मनिए मिले निथावे थाव, पाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अभेव। रहाओ सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर किस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया से नाम से आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

फरमाए समाए फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए नित रवे सुहागणी साची नजर जाए साच तड़ी तन मांडिए कापड़ प्रेम सिगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवा द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार बिन फिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्धक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिये कोई न संगी साथ।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझना।

गुरुमत पद सावा तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने करकाओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हौ गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए। गुरमुख तोल तोलाए।

ना छुटी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाई है, बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार पवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नामे तन बाद है पूलो मार गया साचो साहिब।

दिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधको त्यों सो।

ताकी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमत होए ता पाईए, सच मिले सुख होए। सच्चा निहो ना तुतई, जे सतगुर ते तैसोए, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होए।

हमें मैल न जाए। सो हम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मिलिए शब्द मिले पति आए, मन मत सो जीना पवे बिछड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मत पुले पुलाइए पुली थोर न काए। गुरु दिन को ना दुखावे अंधी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहागनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए, पुली डूंगर।

जिन तन मन साज सुधारिया तुस सोती निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन से रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी

सबको ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोई। इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाइए थोर बख्शना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारिए जे सतगुर माहि समाए। अमर

अग्न मरे जल पाई है, जो बारिक दूध माए, बिन जल कमल सो ना पिए, बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले, जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला। डूंगर देख डरावनो पेयड़ डरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले, गुर

नारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप सिंगार केहू फेर लाइए छोड़ चले कर बार मेहर मलूक कहाइए राजा राव के खान चौधरी राव सदाइए जल

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई हर जियो सच्चा।

आ रहा आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक क्या बेचारे क्या को आप सुनाए गुरमुख आपे देवड़ियाए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल न जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन मुक्त गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुखदाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए, रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई दुख में सवै समाए, जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत नामे ते आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पै दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा लिया न जाए, जे सो अमृत नीरिय पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए, गुरु प्रसादी पाए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा, सच चुग गए गुरु पा।

लाए, अमृत फल हर एक है आपे दे खवाए। मन मुख उबे सुख गए, ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बैठी है ओना कर ना गिराओ, कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ।

सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए

नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुरु की सेवा गुरु भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर निचल पाये ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुरु पाया न जाए। पाठ पढ़े ना बुझई तेसी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए,

सिर फिरे समाज ना लगे सुवाए। तीने लो व्याप्त है अधिक रही लपताए। बिन गुरु मुक्त न पाए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है हो में कर्म कमाए। बिन शब्द परम न चूके ना विचो हो में जाए। बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए। शब्द हो में मारिए माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाए गुरमुख सह सुभाए। बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए। भगत वत्सल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्द हरसा लाहिए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला की जा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

कार कमाए, सुरवट पाजी जिनी पाया सहजे रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मनमुख कर्म कमावने।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपो ज्योत निरंकार सबना जिया का इकदाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाहिए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए, पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए, मन मेरे सतगुरु से चित लाए, निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए, रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई, ज्यो राखे त्यो रहना, गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना, वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई, आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई, इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया, लक्ष्यो राशि फिर आवे दिखा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते, अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते, गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक आराधे गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसे मन आए।

लागू होए दुश्मना साप दे पज फैले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न पतिवाओ साहेब नितान्या का तान आए न जाई फिर सदा गुर सब जी सच जान रहाओ जो को होवे दुबला नंग पुख की तीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ ना को करे।

रोग ग्रस्त पुतंग पलेत्या कदे हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे उस

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपा

जियो। प्रगट पहाड़ है जापदा सब नावेनु प्रतापदा, सतगुर बाज न पायो सब मोही माया जाल जियो। सतगुर को बल जाइए जित मिले परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लो।

नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुध खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाहे जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वेस्तिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए कर्म चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक

सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम वखानिए, सतगुर बाज न पायो, सब सच्ची कर्म कमाए जियो। ओं सतगुर विट्टों कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहे रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जा को जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड देश आजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना भी

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल की।

ज्ञान त्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन

चोट ना खावे ना किस जमन मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पग छेती जावे सहल समावे सगले दुख मिटावे कहो नानक प्राणी।

मेरा मेरा कर पालिए वनजारिया मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चितवे तन संचवे वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपे माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल।

पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करहो जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुर स्वामी भेद न जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल्यो रहन भगतां दी श्री राग महला पंजवां।

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ।

ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर

गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए। मन सिंधे से ही फल पावे, चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिक सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके, सहसा दुख न व्यापे। गुरपुरा पे तैवड़ पागी, आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी, पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली, मन प्यारिया

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो, हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए, सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए, जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ, पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए, चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए, हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए, जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए, मन हर हर प्रीत लगाए वड पागी गुर पाया, गुर सब्जी पार लगाए रहाओ, हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के, हौ बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पद पो, जिंदु सब किलिक दुख पर हरे रहाओ, कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत, गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित, मैं तर नाम आधार है हर नाम में ते गत मत, मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास, तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया जिना आप सुखा गुणतास, हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी।

मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत जिना नानक सच पछाणे।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना पूर बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार कौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कह चुगल का हर की वड्याई।

नानक जन्म सकार था, जे तिनकै संग मिला। पौड़ी, तू आपे जल मीना है, आपे आपे ही आप जाल, तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल, तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल, तू आपे मुक्त कराएदा एक निमख कड़ी कर ख्याल, हर सुदों बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा, हुक्म ना जाने बहुता रोवे, अंदर तोखा नींद ना सोवे, जे तन खसमे चले रजाई, दर कर शोभा महल बुलाई, नानक करमी ए मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मन मुख नाम विहूणिया, रंग कुसुम्बा देख ना पुल, इक्का रंग बिन खोड़िया छोछा इसदा मुल, दूजे लगे पच मोए मूरख अंध गवार।

पौड़ी। सिस्त उपाय सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करे तुद ओते कम कोय लाया, इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए, दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए, पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसै मने आए। सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए, नाम सो ना मनो ना।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराद सबना ते वड़ा सब नाम अगे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिर के पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नामे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है किसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुरु सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लियो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कहे प्यार। नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चालियन।

कबुद डूमणी कुदया कसायण पर निंदा कट चूहड़ी मुठी क्रोध चंडाल तारी कड्डी क्यासी है जा चारे गैठिया नाल सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही नानक अगे उतम सही जे पापा पंद न देही मैला पहला क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे जो तिस पावे नानका सागो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखी है कारज दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निधान अमृत चाखी है पै पंजन मेरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलक प्रभलाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सबसे दे आधार नानक गुरमुख से भी है सदा सदा दातार हों बलिहारी तिन को जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नो सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुरु मिले है उल्टी भई नवनिद खर्चियो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसे निज खाए अनहद तुनी सद वजदे उन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हों ताडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार टाडी मुख लाया हर पुछया टाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे।

सुत संपत देख एओ मन गर्भया, राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले, तो पग मुख जन्म विगोया। कुंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पताल की बाणी, लोचन समय बुद्ध बल नाथी, ता काम पवस माधानी। ताते बिखे पई मत पावस, काया कमल कुम लाना, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछे पछताना। निकुटी देह देख तुन उपजे, मान करत नहीं बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। थाका तेज उड़िया मन पंखी, कर आंगन ना सुख

अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंत।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर करिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी

पावे मिल सतगुर अमृत की जय जियो। वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आई है मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता जाए पुछा जन हर की बाता पाप मलोवा मल मल तोवा मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दा तै नाम दिड़ाया वड पागी गुर दर्शन पाया अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सत पुरख मिलाये मिल सत्संगत हर नाम ते आई है नानक हर कथा सुनी।

वारियां जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हो वारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूर हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों को लीजियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ इक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदय तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला सबद आनंद करे सद केला सहज गुफा में

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

अवसर करो हमारा पूरा जियो। दर्शन तेरे पवन पुनीता, आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बिदाते, खुद जेवड़ अवरना सूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसरना ही एवड़ दाते, कर कृपा भगतन संग राते। दिन सरैन ज्यो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किश दिया पलिया जाई। अनद बिनोद चोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो। जिस दा दिता सब किश लेना, शक्ति अमृत भोजन खाना। सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, कोट नानक गुर चरणा जियो। माज महला पंजवा, सिफत सलाहन तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। तू संतन का संत तुम्हारे।

संत साहिब मनमाना जियो। तू संतन की करें प्रतपाला, संत खेलें तुम संग गोपाला। अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने। तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा। तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे। तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे, ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा। अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया। अवर साध चख अगले देखे, मन हर रस सबते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाहे डुलाना। तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने, बहु तेरे तिस लग मुक्त पय कनेरे। नाम निधाना गुरुमुख पाई है, कहो नानक विरली डीठा जियो। माज महला पंजवा। निद सिद रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है। लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पै पुनीता, सगल उधारे पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजे सर्व उपाय, वड पागी दर्शन को विरला पाए। ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गैर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय सेरा। गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा। प्रभ कृपा ते हर हर प्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया, किलबिख काटे निर्मल थिया। आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा। हत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जब ते साधु संगत पाए, गुर पेट तो हो गई बलाए। सास सास हर गावे नानक, सतगुरु टाक लिया मेरा पर्दा जियो। माज महला पंजवा। ओत पोत सेवक संग राता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता। पानी पखा पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहार जियो। काठ सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया। सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया। तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो। माज महला पंजवा।
सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो। चिम चिम वर्षे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द बिचारा। अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के लाजियो। जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया। सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो। जल तरंग ज्यों जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया। कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ ना होइए जौला जियो। माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया। वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जियो। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले। मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो। सेवड पागी जिन तुम जाने, सब के मदे अलिपत निर्बाणे। साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा। नाम दान दीजे नानक तो, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली। तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पाली है जियो। तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ तोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता। अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभाली है जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहाली है जियो। माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी। गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना। आए ते परवाना जियो। से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा। से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हों बल तिन संग पछाणा जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे। किलविक काट हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो। दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे। नानक कहो प्रभ पय कृपाला, प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना। जल थल नीर परे सर सुबर, बिरथा कोई न जाए जियो। दया तारी तिन सिरजन हारे, जी जंत सगले प्रत पारे। मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया। गुरमुख नानक तिसे अरादे, मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओत तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन।

प्रभु मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अतपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन तारो। तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

लीजियो। सर्व जिया को देवन हारा, गुरु प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखा लीजियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसा लीजियो। माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुझ पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ सिथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ

आया सांत पई बुझी सब कृष्णा आनंद पया सब थाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आते बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले तै पैरी तिसे मनाई जियो जाकी शरण पया गत पाये साफ साफ हर नाम ते आये तिस दिन होर न दूजा ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तुझ ते आई जियो माज महला पंजवा सबे सुख परे प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सह समाज लगी लिव अंतर सो रस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहिब मेरा कट कट अंतर वरते मेरा सदा अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाने जियो प्रभ मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुकुम पछाने सहज संतोष सदा तृप्ता से आनंद खसम कह पाने जियो हथी दिखी प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा तीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा खान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किस करे सो आपे आपे बुद्ध सियाण किछु न जापे अपने संतानो आप सहाये प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आप पैर राम नाम वपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सत मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सच सालाहन बड़ पाजी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद पावे हैं सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान संतर सच्चा सोई नानक सच त्याई।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपुरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान ना।

थापे, तुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत बिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सुख दीजे अपना वारे, आठ पैर गो

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अनदिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय जित सिमरत वर ने चल पाये नानक कौ प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सब सुहावणिया अमृत नाम सदा सुख दाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेख न मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवे ताही अवगण मुठी महल न पाए अवगण गुण बख्सावणिया।

जावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे, गुर कै शब्द सहजे सुख समावे, हों बलिहारी सदा तिन विटो, गुर सेवा चित लावणिया। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर पी जय, बैठ सुखान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नजर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो में जाए, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे सोबा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवे वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसे मन आई, हर जियो सफल्यो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हौ वारी जियो वारी, सत संगत मेल मिलावणिया, हर सत संगत आपे मेल है, गुर सबदी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी सबद सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गवाए, दर सत्य शोभा पावणिया। बिन गुर नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिन लाए, बिन गुर सेवे सुख न होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे, मोर्चा ना लागे जा हो मैं सोखे, अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए, गुर शब्दी सच समावणिया। बिन सतगुर क्यो ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप जिता दिखाए, आपे आप मिल रहा, सहजे सहज समावणिया। गुरमुख हो वै सो इक स्यों लिवलाए, दूजा परम गुर शब्द जलाए, काया अंदर वणज करे वा पारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, अंदिन रंग रता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुरु दाता मिले मिलाया, पूरे पाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वड्याई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप वंजाए ता सब किच पाए, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए, सच वणन जय सच संग्रह, सच व्यापार करावणिया। हों वारी जियो वारी, हर गुण अंदिन गावणिया, हों तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वड्याई देवणिया। रहाओ वेला वक्त सब सुहाया, जित सच्चा मेरे मन भाया, सच्चे सेवे सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावणिया। पाओ भोजन सतगुर तुथे पाए, अन रस चूके हर रस मन वसाए, सत संतोख सहज सुख बाणी, पूरे गुरते पावणिया। सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाएं मोख द्वारा, मर मर जमे फिर आवे, जमदर चोटा खावणिया। शब्द है साफ जाने ता आप पछाने, निर्मल बाणी शब्द वखाने, सच्चे सेव सदा सुख पाइन, नौनिद नाम मन वसावणिया। सो थान सुहाया, जो हर मन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा, निर्मल नाद वजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईए, सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए, जे ही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हों मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंदा

खोए ना कीमत पावनिया। पर थाके सांत ना आई, कृष्णा जाले सुध ना काई, दिख बिहाजे दिख मोह प्यासे, कूड़ बोल दिख खावनिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते है, मन अंतर गुर प्रसादी पावनिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावनिया। हौ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावनिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावनिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावनिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावनिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे

तेरे पद छो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

सोए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारन तिना ठौर ना ठाओ तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ हलत पलत तिनी दोवे गवाए दुखे दुख बिहावणिया लिख दिया कागद मस कोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे जल जावे कूड़ चितलावणिया गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार से जन सच्चे पावे मोख द्वार सच कागज कलम मसवाणी सच लिख सच समावणिया मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावणिया माज महल है तीजा आत्म राम प्रवास गुरते होवे हों मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे मन निर्मल अंदिन भगती राता भगत करे हर पावणिया हों वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे जो अंदिन हर गुण गावणिया रहाओ आपे करता कारण कराए जित पावे तित पारे लाए पूरे भाग गुर सेवा होवे गुर सेवा ते सुख पावणिया मर मर जीवे ता किछ पाए गुर प्रसादी हर मन वसाए सदा मुक्त हर मन वसाए सहजे सहज समावणिया बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए देश अंतर पवे दूजे पाए खुआए बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्द दुख पावणिया तावत राखे ठाक रहाए गुर प्रसादी परम पद पाए सतगुर आपे मेल मिलाए मिल प्रीतम सुख पावणिया एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए आप डूबे सगले कुल डूबे कूड़ बोल बिखावणिया इस तन में मन को गुरमुख देखे पाले पगत जा हों में सोखे सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए तिन भी तन में मन ना दिखावणिया आप कराए कर पास होई होर के करे कीते क्या होई नानक जिस नाम देवे सो लेवे नामो मन वसावणिया माज महला तीजा इस गुफा में अखुट पंडारा तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मजावणिया हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया अमृत नाम महा रस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया बिन शब्द नाम न पाए कोई गुर कृपा मन वसावणिया गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हर दर शोभा पावणिया शरीरों पालन को बाहर जाए नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए मन मुख अंधे सूजे नाही फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया गुर प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेखे हों में मैल जाए बैस सुतान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया नौ दरखा के तावत रहाए दसवें निज करवासा पाए ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर आनेरा ना वसल है ना चूके फेरा सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही गुर पूरे पाग मिलावणिया गुप्त प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हों में मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हों वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवान आरजा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच्चों आप गवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमे चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करें पुकारा। अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा शब्द दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावण्या। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या। बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोहे तू आपे नदरी जगत परोवे। तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए। शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया। आपे गुण गाता गुण गावे आपे आप सुनावण्या। आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे। तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावण्या। आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए। सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सह समावण्या। आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई। नानक नाम वसै कट अंतर आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया।

आवणिया। आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, पर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया। हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर वस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदिन नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया। गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले दे सजाए, करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा तो

सो पंडित होई आसर सगले कुल तार हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत् ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई स्नान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाए तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा।

माया मोह जगत सवाया, तै गुण दिसे मोहे माया, गुर प्रसादी को विरला बूझे, चौथे कद लिवलावणिया। हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया, माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए, हर दर मैली सो बा पावणिया। रहाओ देवी देवा मूल है माया, सिमरत फास्त जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावणिया। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजन सच कमावे, गुर पूरे नाम ते आवणिया। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवे गवाए, सुपने सुख न पावणिया। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावणिया। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कट अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावणिया। सतगुर न सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चित न आवे, बिन नावे बहु दुख पावणिया। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाणे, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे।

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पगती परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

आपसे करता देव ने आई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख ना जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सबते ऊंचा, गुर के शब्द लखा।

सहजा सोई सुहेला अनद विनोद करे सदकेला सो तन मंता सो वड साहा जो गुरचरणी मन लावण्या पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या जिस तू तुथा सो तुद त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल तारे किस दरगे खाक न पावण्या।

सो बत्ता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन विद बांदा किन विद छूटा किन विद आमन जावन टूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन विद मिलिए किन विद बिछरे ए विद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अक्षर जित तावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए किन विद कीर्तन गाए जियो गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरुमुख गुरुमुख कीमत पाए जियो होमे बांदा गुरुमुख चूटा गुरुमुख आन जान टूटा गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा गुरुमुख करे सो सुभाए जियो गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे गुरुमुख विद प्रगटाए जियो गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए गुरुमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस से होयो अनंता नानक एकस माए समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा हर परवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुख दाता तू करे सोई सुख पावनिया हों वारी जियो वारी गुरुमुख मंतन

साड़े कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावे पूरन अगनासी कह सुन तोट ना आवनिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावनिया क्या गुण तेरे आप समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

मन मंदे प्रभ अवगाहिया, ए रस पोगण पातशाहिया, मंदा मूल न उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो, करता मन वसाया, जन्मे का फल पाया, मन पावंदा कंत हरे, तेरा थिर होआ सुहाग जियो, अटल पदार्थ पाया, पै पंजन की शरण आया, लाए अंचल नाने।

परम सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे।

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाये विश्राम। जित कर हर कंस न प्रगटी पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

अभिमानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाद मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास दोए पाए भी गुच्ची है गल पाई।

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर

नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम कुलानिया दूजे लगदा हेत लख सिगार बनाया

समेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत छंद खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़े।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हर।

हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन। हर फिर दिन चैन न पाये खोज दिते सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन। कर कृपा प्रभ राख लियो होर ना ही करन करेन हर

ऊंचा अगम आगाध बोध किस अंत न पारावार। सेवा सा किस पावसी संता की होय चार, दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण हार। आद जुगादी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार।

नानक जीवे जप हरी दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट गही मन

खेड़। पंजवें खान पीन की तात, छेवें कामना पुछे जात, सतवें संज किया परवास, अठवें क्रोध हुआ तन नास।

नानक मनमुख अंग प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार। महला पहला दस बाल तन बीस

जग तूए का कवन हर पौरी, तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाति, रंग तरंग उपार्जना बहु बहुविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया अतिशय न जाने अंधा अंध कमाए। जा पजे ता ठीक होवे कारत करी न जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो कर्म कमावे तिस धर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आंख वखाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणिए। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगर सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खो

आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब खत्ते कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुछ पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सोहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। पूर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लहे, छप्पर नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अनदिन हर हर नाम के आए, ओ आप सुता कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गृही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाव खुदाय का दिल हच्छे मुख ले हो अवर।

पर तोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा हुए कह दसे राह सब समुहाए साथे अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा तू गणते किने न पायो सच्चे अलख अपारा पड़िया मूर्ख आसिए जिस लब लोभ अहंकारा नाव पड़िए नाव बुझिए गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खत्या भक्ति परे पनारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्चियारा जिस दा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा सा हो इक तू होर जगत वणजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान

सोए, क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म मने सिरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार शब्द सुनाया, एक होए असवार एक ना साखती,

कण लया तन चाड़, दोयपुर चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ, जो दर रहे सोबरे नानक अजब जिठ। मैला पैला वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए, खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। रस कस कत्तर पाई है तपे तै बिल लाए, पीसो फोग संभाली है दिच्चे अग जलाए। नानक मिठे पत्री है वेखो लोका आए। पावड़ी इकना मरन ना चित आस कने रिया, मर मर जमे नित किसे ना के रिया। आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया, जम राज नित नित मन मुख हे रिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिले

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

एक निरंकारी नाम आधार जीवा दाता मरे न कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम से आई है दूजी कार है लग जन्म गवाई है बिन नाम है सब विश्व जय खाई है सच्चा सबल सलाह सच समाई है।

जा तुद पावे ता करें भी पूता सिंगी नाद बजावे जा तुद पावे ता पने कतेबा मुल्ला शेख कहावे जा तुद पावे ता होवे राजे रसकस बहुत कमावे जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाहे विशंकर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे नाए रचावे तुद पाने तू पावे नाम के एक कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई न कोई आसन वेखन बोलन चलन जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्मे विच रखे नानक सच्चा आप पौड़ी सतगुर शेर निसंग परम चुकाई है सतगुर आखे कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है लाह भगत सो सार गुरमुख पाई है मन मुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दे दर जाए सच चमाई है सच्चे अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सचियार सच समाई है श्लोक महला पहला कल का तीरा जे का साई करम पंकर उड़रिया कूर अमाव सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया हौ पाल विकुन्नी होई अधेरे राहु न कोई विच हौ में कर दुख रोई कहु नानक किन विदगत।

मीत पवार गया ती उठ रचियों वाद सहवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पोहोए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा सही पूरे साहा जिन्नी पूरा पाया अठी रे प्रवाह रहन इक तैरंग दर्शन रूप अथा विरले पाये करम पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाये मुठी तंदे चोर महल न पाये इने चित कठोर सेव गवाये जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत हो।

पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्या कर्म त्यान पत के साध खादा लह दाना कै सिरदान महला पहला सोने का बिरख पत पर वाला फुल जवे हर लाल कित फल रतन लगे मुख पाखित हृदय हृदय निहाल नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख असर तीरथ गुर की चरणी पूजे सदा अभिषेक हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दज्जे नानका करिये कर्मी लग पौड़ी जीव दिया मर मार ना पछोताइए झूठा इह संसार किन समझाइए सच ना करे प्यार तंदे ताइए काल बुरा छे काल सिर दुनिया आइए हुक्मी सिर जंदार मारे दाइए आपे दे प्यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम परिये पाइए गुर प्रसादी बुझ।

की लह न पुख राजा राज न कृत्या सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेखलंग तस जन्म सजावत ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वश है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने के दरबार टाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विकसया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कदे मार सज्जन सरसया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसया सच्चा शब्द विचार काल विदुषया ताडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे होते मूल ना उतरे जे सो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शिये नाहे तपाई पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगिये सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरें जाए मनुख जिथे बोलन हाई है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया उजड पुले रहा गुर वे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिये सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेता लिया श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए पौरी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव निद पाईए सतगुरु होए दयाल ता सच समाईए श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाही पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना पिंड ना पत्ता।

ऐं दड़गी बहन जाहे लकी कासे हथी फुमण अगो पिची जाहे ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला

करे पौन पानी क्या जात परती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीवान होर आवन जानिया सच जे मंगे दान से तुद दे देहा सच तेरा फुरमान।

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ, तिन

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पाओ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारत कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह सियानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दुआओ। गौड़ी महला पहला, डर पर कर डर, डर डर जाए। सो डर के हा जित डर डर पाए। तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर। रहाओ ना जियो मरे, ना डूबे तरे। जिन किछ किया सो किछ करे। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसा समान, किस विच पूछ बहुत नैसा।

सबनाकाशोए जाके जी जंत तन माल नानक आखण बिकम विचार। गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार गुजरे ज्ञानी यो विचार कत्ता बकता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव देही माटी बोले कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद अंकार ओ नाम हुआ जो देखन हार जय कारण तट तीरथ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने पीतर हो दी वक्त न जाने हौ नाम हुआ मेरी मुई बलाए ओह नाम हुआ जो रहा समाए कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर नाया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन गूजे माने नाओ ताके सब बलिहारे जाओ आप तुलाए ठौर न ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ नाम मिले चले में।

जोगी गण दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वणजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां से आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुरमिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन सन दे ले सहज सुभाए, नानक तिनके लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला।

गए हुए ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू एवड़ दाता देवन हार, तोत नाही।

जो पावी त्यों नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सत शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अतख कहाया अपियो पी आया हम सह विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सह सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत पास्त पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाँ कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुच

हाँ तुझ आसा मेरी काया, तू सुन सिखा मारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी।

पावन पल्ला पाया। हल्त न सोबा पलत न टोई एला जन्म गवाया। हौ खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी।

जियो पिंड सब रास्त सह की मार आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला। अगर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचरमना आगे जम बल बिख।

सुन मूरख मन अजाना भोग तिसे का पाना रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा हम तिसके वन जा रे।

अगरलू तेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर कीनी गंगा पार त्रिभवन सारण हार स्वामी एक न चेत समझाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको सा

केते पंख उड़ाए। हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा लेके तकड़ी।

पाछे पछताए रे राव हंसा पंत नहीं करे हंस न चाहया जाए हंस को चाहन जो गए से आए अनस गवाए आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए कर्मा ऊपर निबड़े जे लोते सब कोए नानक करना जिन किया सोई सार करे हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई।

तेरा सौ मिले वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबद विचार सहज सुभाय मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार पुरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोंगी बां पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे कौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी

नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत नाप वै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यों मेल पार कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सज्जन हारा सिमरिय नानक से दे अवन राजौड़ी गुआरेरी मैला तीजा चौक दे

अंत न पारावार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार।

पूरे पाग मिले गुर आए, साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए, गुर ते सांत वसे मन आए, गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई, बिन नामे बहुता दुख पाई, गुरमुख हो वैसो नाम से आए, दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, सोथाओ सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए, सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सोखाए, रहाओ जलो एह जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए, गुर कृपा ते सत समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ एक गावे एक भगत करे, नाम न पावे बिन असनेह, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राख्या सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए टपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए। भगत वचल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विचों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बक्से नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे देव डियाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवालन हारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए। गुरमुख एव मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजे विकार। जो तुर राखियन मेल मिलाए, कदे ना बिछुड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे ही जाने, नानक गुरमुख नाम पछाने। गौड़ी ग्वारे री महला की जा, हो मैं विच सब जग बौराना, दूजे पाए परम फुलाना, बहुत चिंता चितवे आप न पछाना, संदा करत्या अंदिन विहाना। हृदय राम रमो मेरे पाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई, रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता, हो मैं मार गुर शब्द।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख शांत शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहिब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगे पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई, आपे सुतिया देह जगाई, किसकी कीमत किने न होई, कह कह कथन कहे सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मिलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, नानक नाम रते हर नाम

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना

मंझ को पौजल उतरो पार रहाओ। परमे आवे परमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए। मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया। इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया। कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए। नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए। गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए। पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई। गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ। आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए। पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए। हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए। गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए। नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा। गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई। अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई। ए मन मेरे परम न कीजै गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ। सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे। हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे। सतगुर सेवे सदा मन दासा होमे मार कमल परगासा। अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपें हर

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख डीठा। कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार। बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास। महला तीजा गौड़ी बैरागन, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है। क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया। बिन पगा बरसत।

पुरुष होए कह क्या ओए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जब काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाव दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छाए।

पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अन दिन भगती रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौरी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव करे गुण समले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेये फिर वसे करो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये वड़पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाये हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा गौरी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाये संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ।

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन से आया सज्जन हर प्रभ पाया हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम सुभावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, पर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यो प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक।

प्रीत गुर सिख मुख पाए, ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे, रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा, नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी, रहाओ सचवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई, राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई, तिन कूर त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप पापे लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहा परपूर, निकट वसे नाही हर दूर, रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विकसे आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा, हर आपे बेड़ी

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करें व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर सेवा।

राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए, नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया, कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की, जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया, कै ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साद है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख ना लागे। गौरी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हौ कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हम

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छदाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप में।

फिर ते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया,

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण बिहू।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

त्यों सत गुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काकी कै किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गावाही महला चौथा।

चोली, अपने हर पद की हों बोली। जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली। रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली। हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली। हर हर निकट वसे सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रगट कियो गुर पूरे, सिर वेचियो गुर कह मोली। हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अंदिन हर गुण गावे, मिल सतगुर गुर वे चोली। गौरी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। कित मार्ग हम जाते।

रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते। दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड़ अवर न दाते। जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर।

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जा...

जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साध।

अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम।

जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सत गुरदाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट कट रमैया रमत राम राये गुर शब्द गुरु लिव लागे हऊ मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब

आया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर निवलावे। रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर

ब्रह्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा वड पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतना सदा निर्वाणी जियो वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो मेरा मन तन हर रंग तिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा रिच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूरब लिखियरे तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केरा शब्द मुख पाया हर अमृत उठड़ा।

करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा।

मन अनदिन अनग्रह जियो हर पायणा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इक ना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इक ना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौरी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदास।

मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

जियो। आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा, हर आप खेले बहुरंगी जियो। एक ना भोग पुगाएगा मेरे गोविंदा, एक नगन फिरे नग नंगी जियो। आपे जगत उपाएगा मेरे गोविंदा, हर दान देवे सब मंगी जियो। भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएगा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए क्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर कब गाजे जियो। आपे शरण पवाएगा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरुमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो। गुर सबदी पाई है हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम।

मन अंदर अमृत गुरमत हर मंगवा जियो, मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द।

उपाव छोड़ गहो किसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभु की आज्ञा।

अविनाशी गुर के बचन कति जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन।

आए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत पए सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम

सिमर सिमर सिमर गुण पास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूर है सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पाछ।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा।

अगम शीत का लाह सुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे। गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना। अनक रूप देख न

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आ गए अरदास। बौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक हुए दे

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

तुद पावे ता सतगुरु मया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पागी।

हर गुण गावत रसन अमोली, वनस्पत मौली फल फूल पेड़े, ए रस राती बोर न छोड़े, आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुर पे हैं सहाय। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इसी मदे बस्त अपार, इसी पीतर सुनियत साओ, कवन बपारी जाका उहा विसाओ, नाम रतन को व्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे,

सभी संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरु पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि कृपा।

पंचदूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत इह जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन तू

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जा की शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार। कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेट तो हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरुमुख।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखन।

सो सिमरो अनास को नाच, प्रभ चित आए सब दुख जाए, तै सब दिन से हर कहनाए, दिन हर पौ काहे का माने, हर बिसरत काहे सुख जाने रहाओ। जिन तारे बहु तरन आगास, जाकी जोत जी प्रगास, जाकी बक्षना।

प्रभ सेवक साचा वेसा हो गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला तमवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जान।

आप कमाओ अमरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जते भगवान। आप तैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों।

विचर आ गया पिचर भोगे भोग जल न पाये राम स्नेह किरत संजोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत।

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का तह दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत बसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाहे डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा

गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलक नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीत करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौरी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल परगासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई ताता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जा कै हर तन सो सच्चाओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नसिया करण हार नानक मन

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपूरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुरपूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

पर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपै नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सुख।

सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुमरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हौ बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधेसे नान सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जब मन मेरे।

जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया, राख ले

तू मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा से अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सचरास, गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सुमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके

ताके संग किलविक दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाए, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय, गौरी महला पन्नवा। हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मलमंता शोध उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नदर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर भेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो।

लोग मद खोए, साध के संग किल बिक सब तोए, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक दीजै सागर वाला। गौड़ी मेला पंजवा, जिसका दिया पैने खाए, किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार।

पाई, मन बाचत सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे, गौड़ी महला पंजवा, खादा पैन दा मुकर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस करे सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा। आठ पहर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाए सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा। थाती पाई हर को नाम विकर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा। जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक। महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ।

0: कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विखनते साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी मैला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभु मन ना बसाही दर्पत दर्पत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी मैला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मंथन राता राम कै रंग रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विच सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जह हर गुण गाही हर विसरिय दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे ननेरे सोवड पागी निचल खान जह जपिय प्रभ केवल नाम जह जाइय तह नाल मेरा स्वामी नानक को मिलिया अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा
1: जो प्राणी गोविंद से आवे पढ़िया अनपढ़िया

रूपवंत सो चतुर सियाना, जिन जन मान्या प्रभ का पाना, जग में आया सो परवान, काट काट आ

साज तूर कर सुड मंजाई, अनक जला जे तो वै दे मैल न उतरे सुध ना पे। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

पास हर का सिमरन सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार प्राणी रहाओ आज पैर के आई है गोपाल नानक दर्शन देख निहाल गौड़ी महला पंजवा सांस पई।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

काहे न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कह मिटे तुम्हारे।

सुनता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूरन आस हर संग राते दुख न लागे हर संग राता अमदिन जागे हर संग राता सहज कर वसे हर संग राते परम पौ नसे हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिनको बल जाए जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी मैला पन्नवा उद्यम कर शीतल मन भये मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पय आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल कार्य आए एकत साध संग

जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपते प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा, किसे अराध मेरा।

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौरी महला पंजवा, कुछ बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत गह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत, नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माए सो प्रसन्न पै केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सन कादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहे। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर संत मिले।

को संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पास मिल साधु शरण दहो।

सेवा करो दास दासन की, अनुक पांच किस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, अनद सुख पेटत हर।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस दिन पंच दुहेले ओ बस अगोचर।

खेद करें और बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहि तिनके तीरज पाया संती मंत दियो मोहि निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निर्भव संग तुम्हारे बसते यो धर्म कहाँ से आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निमानो एक महल तू आपे

हो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है कैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपरा।

जग ऐसा मोहे गुरहें दिखायो तो शरण करयो तज गर्व सुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कौन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की विद तुम ही जाने तुम ही सदन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी जन्म मरण को

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरया संत संग पूर्ण आशा।

जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी। परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोखी ने पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

प्रसंगा पूरन हुई मन की आशा गुरु के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

प्रभु राते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभु हुआ हम जन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभु प्राण अधोरी।

ईंट ऊंट प्रभ तुम समरथा, सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको, हर जने चले हमारे साथे, निर्गुण आरे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जाते, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल कराते, गौरी महला पंजवा, सह समायो देव, मोको सतगुरु।

अमृत नाम पियो मन सत्या अनकह ठहरायो। मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पे प्रभु था।

जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे।

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम सुतारे शीतल शांत सुख हर सरणी जल की अग्र निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्याव

हर भगत बिना जीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जत इक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौरी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिछा दिया, गुर कृपा के दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक ना।

तीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

राम सेवक पैर कीने, लख चौरासी जोन फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही, हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जापिये, सो जने दुख ना व्यापिये, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन के, नानक

तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया, सो

साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निध सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग मानिया हर तन जाके गृह वसे कहो नानक तिन संग दुख नसे गौड़ी महला पंजवा गर्भ

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खत्म हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभु के गुण गावा।

अज्ञानी मानुष पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अगथय, कृपा निज प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लय, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए, जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए, रहाओ एक रैन के पावन तुम आए, बहु जुग आस बदाए, गृह मंदिर संपै जो दिसै, जो तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, चिन्मय होत पराए।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह बिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं जाया मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

0: मैं कैसो कह पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला में

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुरु पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ, शास्त सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तू।

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चलन और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाकर ओ सगली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से वो अर नाम त्यावो त्यागो मनोगुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी।

जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

मान जोर तुम्हारे सुख बसा सत शब्द निशान राव सबे गल्ला जातिया सुन के चुपकिया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चहु क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

गुर सिखै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा। हर राम राम राम रामा, जप पूरन होए कामा। रहाओ राम गोविंद जपेंदियां, हुआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोविंद मनो विसारिय, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे जीविय, पव जल पइए पार। मिल साधु संग उधार होए, मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात। नानक उबरे नाम जप, दर सच्चे साबात। गौड़ी माज महला पंजवा। मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू, मीठे हर गुण गाओ। सच्चे सेती रतिया।

प्रकृत सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराध्य उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाच

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

चरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इव जग देखता उठतावे, फुगत मुकत का

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परसे जे नाहिन तो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कट से रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो ते हारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करुणा में पाव सागर कह।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिकमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पै सुहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उलट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म।

जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने कौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई कहीं निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

नारी पुरुष सब आई लोए राव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मो को एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पचाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवे खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वरन मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे सा साचा मुक्त फेर क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार सात पुरधार है रहाओ जिसके अंतर सात वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सत एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैर अच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम छुपाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हों में मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला सीमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुरु सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथ नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बार एको जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे तो आस निराशा काम क्रोध बिक भूख पे आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलख अपेवा जय जय देखो तै तै साचा दिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीने सो तत विचारे साच हृदय सच

जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभु सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्व बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्व निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी दिन गुरु पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे दिन गुरु अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाख दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीश समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत शैत बाहो मद कीट में खासा हरनाखस ले नखो विदाता दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई, जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, ऐनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवर

प्रणवत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पर पोसी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता। गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन

जिसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, जिसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो जिसको जिसका यो जियो, गुरु सब जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हौ मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हौ हौ करत नहीं सच पाई है, हौ मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हौ मैं कर राजे बहुतावे, हौ मैं खपे जन्म मर आवे। हौ मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो भूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेचल कोई न

ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख देनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए, काल ना जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकुम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल ना जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल ने चल नहीं डोले, गुरमत साथ सहज हर बोले, पीवे अमृत तत्व विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन के मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच होई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मलख होई, गौरी महला पहला, राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संद क्यों जाने, गुरुमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चों हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आए, गुर कै शब्द सच लिवलाए, हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा, सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड पागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम काल ने

परम फुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

पावन हारा मर्ज मैं फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिका माता बिख माए समाई माया कर मूल जंत्र पर माए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए।

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा सबद पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई, हौ मैं तृष्णा सब अगन बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए।

क्यों मिलिए हरमाए गुर पाग पूरे पाया गल मिलिया प्याराए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए पर तक पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख पाथिया महाजाले। गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाले। सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल। आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल। गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दास करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल। हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल। गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल। गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल। हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल। वड पागी गुरु।

जब हो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता।

जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द रिद अंतर तार है पंच जना स्यो संग निवार है। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए।

हे अमृत पियो नाम, सहज कीनो जी को दान, सहज कथा में आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया, सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे ऋण चुनकार सुहाया, ताके कर पार ब्रह्म समाया, सहजे जाको पर्यो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सच तर्मा, जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बाने। गौड़ी मैला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया, पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया, पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपुरे, कवन स्थान जो कबहु न तरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे, रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण

सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचर सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सद वसे चह पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे, नेचर थान साध संग तरे। गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे

सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाई न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सद

बोलें कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दव की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंध न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती।

कुल नहीं जाती। जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई। गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ रहाओ। गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी। गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग। गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। गुर के बचन जागे।

आखा मां अगन ते हाथ दे राखा किस गुर के ग्रह टो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर के ग्रह तीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुरमो को दीना जियो अपना दासरा आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश पै परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कूकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए चूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना चूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मध जो अंत निवाह है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभु माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिर्फ काटी गोपाल कर अपना लीनो नगर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण त्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से होए भगत जिना कृपारिया हौ वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की और संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अमो

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान तजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहयो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाभ तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दरस हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

मुंद रैन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सातन दुबलिया जियो पिर कै हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे नानक सातन।

करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

जियो हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिरता।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम

हा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यो मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

चित लाय सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाय गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर।

पानी पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया करे आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर के सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरुमति रंग लाए तेहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे प्यारी विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो गुर के पाए प्यारे रैन सुख सुती जियो अंतर उर्धारे मिली है प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे। आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कारे सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुर बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई। गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यों मरिए किन में दाम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं पाप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसै कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमती तन पाईए सेवा सुरत भगत के साची विचों आप गवाईए हम मतहीन मूर्ख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

पाए सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लीलाए नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए नानक नाम गुरमती पाई आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोग लुवाए बिख्या लोग लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चितलाए मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण परपूरे फिर दोष ना ही सुखें दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी किसनी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पिया ता शीश सोपान गुर पे संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अनंद भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया अनहत वाजे वजे कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निह चले पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया।

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आराधिये जम पंस बिखरा अग्न सागर निमक सिमरत साधिये कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नाम।

बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिन सें जपत नाम मुरारी बिनवंत नान।

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

हर संते मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया। वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओम सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस

कौड़ी। या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने विसराना, तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक राम।

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नान।

मधमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित

गमिय जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल ना मैं राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो

एक नाम ले मने परो, यैया जन्म नहारी है गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मात पिता।

खट शास्त्र हो ज्ञाता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी, सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सो अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

अरे पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहा बिसासा देह का बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए पर

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र वेद सब आम न कस्तो कोए, आप जुगा दी हुन।

भागा चार कुंट देह दुष्कर्म आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसबा जो फिरता।

मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत। पौड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही,

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते कीचत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ज्ञा कै

पवन बिन नामे सुख नाहे, तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सद के, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआठा है नाही, जो सगल त्याग एक लपताही। ठहक ठहक माया संग मुए, हुआ कै कुशल न कथु हुए। ठांड परी संत संग बसिया।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसु नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सक

होए। मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश मनुआ जी तै हर मिले ते सूरतन वेश ना को जाने आपनो एक

हुक्म बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रे जो बन ने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल कर हो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के काम न आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तें बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया। होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई। पात साओ छत्र सिर सो, नानक दूसर अव

तैं पंजन अग दुख नास मने अराध हरे संत संग जे रिद बस्यो नानक ते ना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुखना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डह काए दुतर महा विखम ए माए गुरुमुख।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

एकत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा, उआ

आवे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन उठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटते होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्मे मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभु।

मालक मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत् लाहा माया तारने दैद स्टूडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पाव जल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर में त्रिभवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वख्याना। अखर मुक्त जुगत पै परमा, अखर कर्म कीर्त सुच परमा। दृष्टमान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। पुस्तक कह न जाए मुख।

एक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर

हैं अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास दिसंबर एक है, नाम जप अगन अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, कीने राम नाम इकाखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी नावे। ताकि एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोय उदारो।

कै सिमरन दूत जन से, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अंधन जागे, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, प्रभ कै सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, छे सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुरु पाए, प्रभ कै सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभो न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पास लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई,

जह माँ प्याम दूत गमदल है तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उदारी। अनित पुनः चरण तर्क नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नाम पावो सुख घनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोड़ी बंदना करे हर का नाम जपत निस्तर है। अनेक माया रंग सिखना बुझावे हर का नाम जपत आभावे। जे मार के हो जाते केला ते हर नाम संग होत सोएला। ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार कराही। अनेक विघ्न जह आए संगारे हर का नाम तत्काल उधारे। अनेक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कभू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग नाम पाये साध के संग। जे मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैंदे महा अंग गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंख तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पहचानू। जय महा प्याम तप बो काम तय हर के नाम की तुम ऊपर छान। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर तय नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जम कोट। हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध समाट। हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप कर दीना। हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते। आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे। पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान। जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुझ राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव है महा उदास कपि सरथीव है। अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर पूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन। निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न बिख्या करे। जल को वह बहु दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची वीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच
नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे, पेट अनेक अगल नहीं बुझे, कोट उपार दर गैनी सिजे, छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे, जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तों कह बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेता, निर्तन को तन

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल।

मारे आ, बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोगन पोजन सुख सूद, बिर पया ऊपर साख सैन, मुख पियाओ बैठ को देन, त्यों निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूर अंग व्यापे, नानक काड लेहो प्रव्यापे, आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदा दान दूरे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, दर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छपस नाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। अंतर अगन बाहर तन सुहारा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुम्हारी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहो जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सर तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सूख गनेरे।

मारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस किस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।

बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ

प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी।

जी प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जी प्रसाद सुने करन नाद, जी प्रसाद पेखे विस्माद। जी प्रसाद बोले अमृत रसना, जी प्रसाद सुख सहजे बसना। जी प्रसाद हस्त कर चले, जी प्रसाद संपूर्ण फले। जी प्रसाद परम गत पावे, जी प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो।

होत साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस गुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट बीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

वाला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह

दर्श बड़ पागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे।

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन क्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आपम ध्यान तारे कई कोट कब काब विचारे कई कोट नरसन नाम दियावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिज आत्म निकोर कई कोट पर दर्द को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख मिट जाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश पू मंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थ शास्त्र कई

जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के देते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर करावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे।

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानुष ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रचे, जे जानत आपन आप बचे। पर में पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवेन चावे, जो

नानक दर्द गले अष्टपदी। जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सो जन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवै,

सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लखो उस्ताद।

समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उस पे तिन कहो किस होए थाम सनंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला।

चार अष्टपदी। संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन कागजों लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दोखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक को सर्व रोग।

संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग। संत

बिंद कह हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत हम दिन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किच खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबह हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस पे उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जान नहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्बे जा सब किस किसका दिया दरबे आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बह दार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तह हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़ता रहे प्राणी गुरुचरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक करगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल
तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, क्यों वापार विरला वापार है, नानक ता कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवावट पागी पाइए, साध संहर की संगाइए, अनेक विघन ते साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुरु की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय को होए, सच करनी सचा की रहत, सच हृदय सतमुख कैत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोदन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनय।

जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एव नराओ। मनसा पूरन सबना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फोर, किसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै, सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपी, सरगस्त में भोगी। चाहे चाहे पगते सुख पाया, नानक किस पुरुष का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा दिन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना तेख करें एक रंग। नाना विद की नो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूरे ओ पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कब किसके सब किसके ठाओ, जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश कपाल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के समुद्रे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष सब माए।

सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग, आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हो कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नान सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खासम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जतने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपौ हो बसे सगल व्याध मनते खेनते जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवण निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सबली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन दिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ धावे सो तन हर सेवा ते पावे।

आज है तीसरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र दो दो हर कहनाए दैद स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा कह हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की पगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कर्म सनाथा राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतर स्मैल बिनस जाए हो मैं विक फैल हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए नानक की प्रभु बेनती अपनी पगति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग बल पागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया इच्छुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरपुरे तप यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो पगत पाए तरी है संसार बिन पगति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम
सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिकसे साध चरण तोय। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त कृपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो हो पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक हर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत, तब हर्ष शोक कोक्षे व्यापक। जब आपन आप सार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए, तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे, तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभु होए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, तह बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे पूख कवन तृप्तावे। करण करावन करने हार, नानक करते का नाहि कुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तय वेद कटे पा कौचीन।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनहद वाजे सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार से रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की।

प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए अस्थान, बहु न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तें सिद्ध,

पास सुंदर चतुर तट का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत

जानी, दुख रोग बिन से पे परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, सब ते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

ऐसे लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत, राम नाम तन संचवे साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्म

हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख ले।

रस बेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगाश सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म।

हर नाम न जपें करत विपरीत, पर त्रय रमें बकें साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मज में अपागे। श्लोक। दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी। दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संत

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म। श्लोक। दुर्मत हरि सेवा करी, तेते साध किरपाल, नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, पतित उदारण मन बसे, नानक छूटे नाम। पौड़ी। त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन परताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब मैं प्रभ एक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे कुटुंब स्यों गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपी

आई खुद नो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिन की तीस पार लगाई गुरमुखा नो।

प्रमपूले मनमुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन रत्ता रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सबस

ज्यों बोलन तिवै सुहन, नानक हर आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी। तू करता

कोई गल्ला करे कनेरिया जे कारवत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटिए मिर संगत सुवरण हो जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेविया तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मुह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सच सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वश के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभु का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम अरादिया आप तरिया सब जगत कराया। महला चौथा। सारा दिन लालच अटिया मन मुख होरे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब तिल्ला मन मुखा दे सिर जोरा अमर है नित देवे पला जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला सतगुर के आखिया जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पला।
पौड़ी। तू वे परवाओ अथाओ है अकुल क्यों तुलिए, सेवड पागी जे तुद त्याई दे जिन सतगुरु मिली है। सतगुरु की बाणी सत रूप है, गुरबाणी बनी है सतगुरु की रीस है। होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, ओना अंदर होर मुख होर है, बिक माया नो चख मरदे कड़ी है। श्लोक महला चौथा, सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वक कड़े जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुरु पास, कालन कूड़ियार न लबनी किते थाए पाले। जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दै गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओहो आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा, जिन अंदर नाम निदान हर तिनके काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सबको वल, सब दर्शन देख करें साबास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करें रह रास। गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी, तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना, तुझ जेवड मैं होर को दिस न आवई। तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मो कुटंब दिस आमदा। सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे औरत चित लाए दे। से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याय तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा, अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा, गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी, जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े, जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याय दी से थाए पए, जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड़े मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा, मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख नो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर के पेजिया, ओथे भी मुह काला दुहा वे मुखा दा कराया। पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए के उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी, वे मुख रलना ना मिले।
ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਲਤ ਪਲਟ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਫੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਧਨ ਧਨ ਸਵਾਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਫਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿਥੋਂ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੇ ਨੂੰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਚੜੰਦੇ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਮੰਦੇ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ। ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦੇ। ਪੇਡ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਨਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਟੇ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਈ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਕੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਧਾਈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪੈਰੀ ਆਣ ਸਭ ਪਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਗਇਆ। ਨਿਤ ਚਹੀਆ ਪਾਏ ਚੱਗੂ ਸੁਟੇ ਚਖਦਾ ਚਖਦਾ ਚੜ ਪਿਆ। ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਤਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ ਤਨ ਪੀ ਉੱਡ ਗਇਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਵੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਹਿਸਾ ਦੁੱਖ ਪਿਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੋਈ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮੋਹ ਅੰਬ ਪਿਆ। ਜੇ ਸੋਇਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਗਿਆ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਦੂ ਉਪਰ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸੱਚ ਸੇਵਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਸੇ ਭਗਤ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਲਾਇਆ।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिक मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिए ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आने वाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कढ़ न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोरी नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नामे की

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े समाई, अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या, आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वन जी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उज्जड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने को औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ सिद्धू किछ गुज्जा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाए, जिन निरपो नाम से आया तिनको पो कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आए, ते हर दरगे पहनाई है जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हाँ।

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए।

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त।

सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाए रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया, जन नानक के

जगत पुलाया दुर्मत बिखिया विकार, सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी इक मन इक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे।

के जन भगत हैं सच सच्चा जिनी अराध्या जिन गुरुमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सबदू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया सच सच्चे नू

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया, सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, ना ही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे लए छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मत हारी, कूड कुसत ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला कोय उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुरु पेटे थाए न पाए, नानक पूरब लिखिया कमाए। पौड़ी, जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास, ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास, कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने

के पूरे सतगुरु पावे। गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे। सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे। गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान, संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान। महला पंजवा।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागत।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

नानक नाउ जपन दो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जा

बिखे कौड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाओ पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए, जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाउ मिठा, साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा, पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा, हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवा।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तो वे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथो वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुं

ना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

14। अब मोहि जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पात काहू स्यो नाही। पत अपत

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली।

कहां सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हो आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा, ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड़, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे, ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री रामे। गौड़ी कबीर जी, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेह ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा, कह कबीर निरंजन त्यावो, तित कर

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

कहत कबीर पले असवारा, बेद कदेव ते रहे निरारा। गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचों अमृत खाए, ते मुख देखत लू कटलाए, एक दुख राम राय काटो।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

चेतक सिद्ध पय लिव लागे, रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प कर तारे, जो हर हरे सो हुए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना।

सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियोर लाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक

कोई। कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानिया।

गौड़ी पाप पुन दोय बैल बिसाहे पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर इन विद टांड बिसाहो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा रहाओ काम क्रोध दोय पै जगाती मन तरंग बटवा।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी तारी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

प्रेम होए। जित कट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अमो

रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाव संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकस थयो शीश बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कठी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ۔ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो۔ या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो۔ औद अनल तन तिन को मंदर चौदिस ठाट ठ

ठाकुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, चूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै।

गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन परी ने उसासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की

कहां पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया का जीरे जाहेगा मैं जाना अब जत समझ आना जत जत देखो।

जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे नाम निरंजन जा कोरे कबीर को स्वामी।

नाम पदार्थ मने बसाये हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपड़े निंदक तोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माए हमारा।

ते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पतियाही। जब बुद्ध होती तब बल कहता, अब बुद्ध बल न

आदि वस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली, बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मूसे, दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

बिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कटियो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल।

चचा रचित चित्र है पारी, तज चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र ए है अवचेरा, तज चित्र है चित्राक्ष चितेरा, छच्छा ए है छत्रपत पाता, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा, रे मन में तो

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तम

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सब ही सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जैसे।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरा।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा मेरी हरो विपत जन करो सुभाई।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिए शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिए कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या वो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

हरत्या में हरत्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हरत्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवन अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुद आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा।

तित रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवे मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, तित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, तित रंग नाचो रख रख पैर, आसा मैला पैला। पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज खाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख देहे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विदासे परमल।

नित वेद नाद बिंद की सुरत समाये, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवांतो, राजन राज सदा बिकसांतो। जिस तू राखे कृपा तार, बूढ़त पाहन तारे तार। त्रिभुवन में जोत त्रिभुवन में जानिया, उलट पई कर कर में आनिया। एहनस भगत करे लिव लाए, नानक तिन कैला गै पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत स्याणप लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रहे लिव लाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच कर।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म धर्म संयम सत भाओ, नानक बख

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, सात वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ रमनी रवे बंधन नहीं टूटे विच हो मैं परम न जाई सतगुर मिले तहु मैं टूटे ताको लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर्धारे भगत वचन जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए मनसा मने समाए नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद अपार अप

ऐनक अंधरे दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

वसै मन आए, नजर करे ता सतगुरु मिले, सनमत नानक पव जल तरे, आसा मेला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी।

अंध जीव रस नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चो।

आस प्यासी से जय आवा आगे से पावा के न पावा क्या जाना क्या होएगा री माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

कोई नदर करे मेलावा होई राहो सरोरड़े तन साथ पछाणिया सहज सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत कोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरज को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आसा करती जा मैला पहला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा ऊपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मैला पैला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश वे, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवे।

नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहो कजूता कणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगै जुग जोगी, परम तंत में जोगं। अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो, कल्प त्यागी बादं। सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्पूर नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान विपूतं। हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या, नाना वर्ण अनेकं। कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है।

रंग रच रहा एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसमे सा पुरसा।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त गत होए।

गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार, निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखताओं को लगे नकीर, जम काल किस नीर ना आवे, नानक गुरमुख साथ समावे, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विच्चों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल

दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम

सुख पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एक छूं छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ। करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्दै को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वकार।

सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस

जेहे कर्म कमाए सब दे ऊचो ऊचा होए नानक साथ समावै सोए ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपने।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर न कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा गुर सायर, सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बूझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे थिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा दो कूर कमावे, विष्टा का कीरा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे न आवे जाए। पूरे गुर ते साज समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सह समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा निर्त करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा कर अठवा काफी मैला तीजा, ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै पाणे सतगुर मिले, सत सोजी होई। गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई। मैं सहुदाता एक है और नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई। रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाई है गुर विचार। बिन नामे जम के बस है।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा और न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरह

न रहे मन खोट कमाहे, हम हर्ष्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। ये सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन ए तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत खाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रह रहा कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहा। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुरु पुरख पाया वड़ताग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुरु पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा।

आ जाए वडे पाग गुरमुखर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर्म।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चर।

हर सिंचो गुरमत जेत, जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी, जो देहो मति तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी, हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा, कब को पाले कुंगरू ताला, कब को बजावे रबाब, आवत जात बार खिन लागे, हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई, हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब तो मेले पंच सत गायन, कब को राग तुम उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे, कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पति ने ना पत होए, जन नानक हर हृदय सद त्यावो, ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा, सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे पाई, हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए। ओंकार सतगुरु प्रसाद रागा सा, कर अठवा के काफी महला चौथा। आया मरण पुरा हो मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है, गुरपुरे सा वास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया, चलन आज के कल तुरु फुरमाया।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया, जिन पुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चार मेल बुलाया राव, अंतर नाम निदान गुरु मुख पाई है, अंजन नाम से आए हर गुण गाई है, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है, नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है।

बताया हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन हम हर दिन रह न सको हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हमरा मन बैराग बिरकत पायो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला दिन रह न सके तैसे मोय हर दिन रह न जाए राज करण जगदी सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई जन नानक के मन अंध होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन कहुं व्यापे, एक संचय गिरही तिन होए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरमुख नेड़ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नी वाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार ऐसो राति तन सुहागन।

आचार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार है माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल कौन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल रत्न अमोलारास विश्व सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद सौदा गुरमुख किने।

माया मूठा से कह नहीं पर में फूला बोती राही। बाहर देख करे कनेरे अंतर बिखिया उतरी केरे और उपदेश है आत्म

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब पकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीसे, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मगना पतियारा,

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावा ता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

सह किस हर पर मरना, मोआ हो वह किस नहीं चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्जी रस अमृत पीवे, रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी विद कर खाती, जान सत कर

अस्त्र रखत परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे, एक कड़ी दिन को बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन को कभू ना बिहावे।

सब अंत न जाने, पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी, प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर कातान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर कह अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सद ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृदय अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अरहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुरु तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संची है भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ करकत हो न जाए रहाओ, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सच्चा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, द्वार करत चूठी लग जाता रहाओ, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, किस्यो लोक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृत पाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, भगत पंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुरु दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तांते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुरबोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोड न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक जे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम। संग जाम लाग पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो। जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया। कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रा।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुख दाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा मैला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अर्ध करे सास सास समारे ना को है अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर गुरु पूरे कै आधार।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सद

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एहो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नान

वो किस पे करे पुकारा। निंदक की दतकत होना ही खसम एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर।

छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दा, दिनस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्या। उदम करत हो वै मन निर्मल नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पा।

आई रे आज के बस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

सबा मन की और किसके आप सुनाये बिन नामे सब जग दोराया नाम मिले सिपाही है क्या कहिए किस आप सुनाये जे कहना सो प्रभु जी पास सब किस की ता तेरा वर्त है सदा सदा तेरी आस जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकी

महा कोरते बा पकड़ गुर काट लिए निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे गुण निधान साहिब मन मेला

साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हर्ष सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पे जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सद कुर्बाने। आसा मेला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट।

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वर्ण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल वर्ण बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख।

तब आप सिदार सवार हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मुझे मिली हदूर चुका निहोरा सकी सहेरी धर्म गया गुर फिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे सेज तरी पान कडन ते छूट परी मंदर मेरे शब्द उजारा अनज बिनोदी खत्म हमारा मस्तक भाग में फिर कर आया फिर सोहाग नानक जन पाया आसा मेला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन से मेरा ठाठा बागा बार सू

तीस आवत है बहुत पिहाला, सगल चरण की इह मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा महला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन।

सिख डेरा हुक्म बूझे सोई परवान साथ सब जाता निशान गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आशा मैला पंजवा जहाँ पठावो तह तह जाए जो तुम देहो सोई सुख पाए सदा चेरे गोविंद गोसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगाए रहाओ तुमरा दिया पहनो खाए तो प्रसाद प्रभु सुखी बनाए मन तन अंतर तुझे त्याए तुमरे लवे ना को लाए कहो नानक नित इवे त्याए गत होवे संते लग पाए आशा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

सतगुरु का सत शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभु अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुरु दीना, इन सुख नानक अन्न।

तुम तुम्हारे दर्शन मांगो दे प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट मो आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आशा मेला पन्नवा एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत पर होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पत पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहाओ प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरु

से पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया आसा महला पंजवा। सत गुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सकामा चूठा मो मिथ्या पसारे राव। गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संजम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दे।

इत उत कतैन डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुरु मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

निसारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाई प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जा के गृह सब किछ है पूर्ण सो पेटिया निरपैतनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अघाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

नानक नाही तिन कामी। आसा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा। अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग पानी रहाओ, द्रुम की छाया नहीं चल ग्रह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए, आसा मेला पंजवा दो तुके नावा। उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लो रहे।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तू साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्थाटी, ओस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

कृष्णा जय ओ निर्मल का हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहा दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरेण ए सेवा साधो कहे कृपाल गोपाल गोविंद साध संग नानक।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन बन

अब मोर है मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन

हर परे पंडार, कोट ना आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोए, नानक पाकी परम गत होए, आपा कर सतवा।

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे न चूरी है। नानक दर्श

पुरख बिराते बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा दियो कवन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला।

मोकुटंब बिखे रसमा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतिया।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, ईते ऊते कट कट कट कट, तू ही मोहिना, कारण करना कारण करना, एक है सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोएना, आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगें अतोला, प्रीतम पाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक इहो हर का चोला, आसा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे, ठाकुर आयो आहे, रहाओ नाम पदार्थ।

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीयन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा मेला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी परम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलसिया। आशा मेला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। ओहो नियो नवेला, अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय, इव मन दी जय,

आए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसे आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही किन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया जे कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आशा मैला पंजवा हर शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहा सो चित कर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

ना रहाओ। टूटे अन पराना रवियो सर्व थाना, लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना, तो चूकी सगल कान

प्रीत कर हां बिनस न जाए मर हां गुर ते जानिया हां नानक मन मानिया मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो विदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मेरे मना रहाओ।

आशा लाग्यो तन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार सोम ज्यो डोलत नै सुध राम भजन की मानस जन्म अकारच खोवत लाज न लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सैतन की।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन का

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कम

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहूने माथे छाई, साठ तनी जग आए बिना सा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहा, जग मुहे बांधा बहुत ही आसा, गुरमती एक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकत कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमन मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जमकाले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हलत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौ को कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अतूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख होए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग स्यों लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बड़ पागे।

गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सोपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाने। निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे। सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहाँ नाम मिले तह जाओ। गुर प्रसादी कर्म कमाओ ना मेरा ताहर गुण गाओ। गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम बसिया।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

ग्रास इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है। राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो। आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा। दुखदा लागे नाम विसारा, जिसको बक्से नाम जपाए, दूत ना लाग सके।

अवर न औषध पंत न ममता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विम गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग।

राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुरु शेर देखो प्रभ नैनी राव। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तीन गल सिलका पाया टुटन मोत सरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

आई, कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान संबोली हर

जिसनो आप खुआए करता खुश ले चंग्याई, कोई हु पीर वर्ज रहाए जमीर सुनिया काया।

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

जाए रुआये, हुक्मी हुक्म चलाए विगसे, नानक लिखिया पाये इको अंकार। सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रो।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे। वणज करो मकसूद ले हो मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

पर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जानी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी वन में तप करें नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साध का गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर पगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

हर दर्शन दीजै, गुरमुख नाम से आइए, मन मंदिर पीजै रहाओ, कूड़ा लालच छोड़िए, तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाइए, परमार्थ जाने, यो मन राजा लोभिया, लुभ तो लोभ आई, गुरमुख लोभ निवारिए, हर्षो बने आई, कलर खेती बीजिए, क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पीजई, कूड़ कूड़ गडावे, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हो मैं बिकमारी, दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई, मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मन मरना आखी है तिन कर तय किया आप दवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परखाई, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

नित नित खरा संभालिए, सच सौदा पाइए, खोटे नजर न आवनी ले अग्न जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाई, लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दरगे नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पछाण सी, सत संतोख।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता

नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी जात दुपावे ता गुरमुख बूझे, होर मनमुख फिरे आनी, चारे वेद ब्रह्मे को दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी ता का

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे है।